इस इलाके दे दसवंध लई ए सेवा इसनू दिती होई जी। और भाई फगू जी बड़े सिदक और प्यार वाले सन, घर घर जाके गुरु के सिखां पासो दसवंध गुरु लई इकट्ठा करना ते फिर आनंदपुर

बहादुर सच्चे पातशाह मेरे घर आके चरण पान। इसने दरवाजा भी अपने घर का इतना बड़ा बनवाया कि गुरु साहब नू घोड़े तो ना उतरना पवे, घोड़े समेत ही मेरे।

अज ए खुशी दी खबर इसनु मिली के सतगुरु थोड़े दिन तक धन गुरु तेग बहादुर साहब आ रहे हैं। ता इसने जिथे जिथे भी कोई गुरु का सिख सी जाके दसवंध लिया गुरु के खजाने विच रख दिता कोई गुरु साहब आनगे ते एक एक दा नाम लेके के दसवंध मैं भेटा करांगा गुरु के सिखा दा। सारिया कोलो जो भी किसे दी कुछ श्रद्धा है गुरु दे लिखे दिंदा ए लिया के गुरु के खजाने विच तजोरी विच रख दिंदा। एक माता इसने जाके आख्या भाई कोई गुरु लेके दसवंध देना ही माई कुछ घर की कल्पना करके बड़ी औखी हुई सी झाड़ू दे रही सी आख्या ये कोई दसवंध लेने का समा है आख्या जो कुछ यही भाई दे दे ते जेड़ा भी उस झाड़ू दे नाल कूड़ा कट्ठा किया सी ओ चुक के उसने पाई फगू

अपने दर ते कुर्बान कर दी। ए गुरु नानक दा दर है जिथे प्यारी सात संगत एक तिल मात्र भी सेवा कीती होई व्यर्थ नहीं जांदी। इसे लई भाई साहब

जिदा नाम ही इतिहास विच पाई गरीब लिखी मन उमंग दे नाल भर आया पर नेत्रों तो जल आ गया जदों मन विच सोचिया भई मेरे पास तां कुछ

एक कौड़ी मेरे पास है। कोई हजूर दे सुंदर दोशाले बेटा करेगा, कोई तान करेगा, कोई सोनल करेगा, कोई कुछ करेगा, ते जदो मैं एक कौड़ी बेटा करांगा क्या मैनू शर्म ना आएगी, लज्जा ना आएगी। पर फिर मन में आवाज आई है गुरु तक गरीब निवाज है, वो तो माया नहीं वेखदा, वो तो सिख का हिरदा वेखदा, प्यार वेखदा, ते ए गुरु का सिख भी इस टोली दे नाल तुर पिया, ते जा सतगुरु दे दरबार पहुंचे, संगतां कीर्तन विच जुड़ियां, कीर्तन तो बाद जदों अपने दसवंद पेटा कर लगियां संगतां, सारियां संगतां दे नाम बोले गए, जितनी भी किसे ने पेटा कीती सी, गुरु दे दर तो प्रसन्नता प्राप्त हुई। काफी समा काफी टाइम बीत गया, धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे भाई अजे एक ऐसा सिख है जेड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा, पेटा रखी बैठा, ये कौन रखी बैठा।

पर मेरे पास है भी तो यही खोजी। ये बेचारा उठता नहीं शर्म दे मारे। लांगरी सिंह आ गया महाराज, लंगर तैयार है, तुसी छकोगे तो संगत भी छकनी। ते आप कृपा करो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भाई जिन्हों ने पेटा देनी है वह दे। अजे एक सिख ऐसा बैठा जिहड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा, ते ओ पेटा देवेगा ते फिर दीवान दी समाप्ति होवेगी, अरदासा होवेगा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। गुरु का हुक्म सुन के ए भाई गरीब नेत्रा तो जल आ रहा, नीवियां पाके हौले हौले गुरु के दरबार विच आके सतगुरु के चरणा ते बह गया। सच्चा पातशाह ओ मेरा देशाई, तू अंतर जामी है, तू घट घट दे जानन हारा है। जिथे एडे राजे महाराजिया दियां

तेरी पेटा लई तो मैं कदों का इंतजार कर रही तेरी पेटा लई तो मैं इत्थे बैठा हाँ मैनू तो सिदक दी पेटा चाहिदी है प्यार दी पेटा चाहिदी है जे प्यार है तो सब कुछ है जे सिदक है तो सब कुछ है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक सिख जेड़ा एक कौड़ी बेटा लियाया सी शैव जी ने बड़े प्यार दे नाल एक कौड़ी अपने हाथ विच रखी ते सिख नू नाम दी दात बख्श के जन्म मरण तो रहत कर देता तो भाई साहब कहदे न पावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे भाई गुरु ने ता तेरा हिरदा वेखना है तेरा प्यार वेखना है तेरी माया नहीं देखनी वो तो जुगा जुगंतर देना आ रहा है जे उसने माया वेखनी होवे ता उदे एक अख दे फुलकारे विच एक भिखारी नू चक्रवर्ती पातशाही मिल सकती है वो तेरी माया दा भुखा नहीं गोविंद पाओ भगत दा भुखा तेरे अंदर सिदक है ता गुरु सदा तेरे ते निहाल है सदा तेरे ते दयाल है भाई साहब गुरदास जी कहंदे।

बापुर मरा गुरु रामदास नाम कह बुल मरा जहां मान अपनी सिद्ध को सभा जहां

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलदे ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुराने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुर ते इहदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदश है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नूं तकदियां साहब जी मरदाने नूं पुछण लगे, मरदानिया मौत नूं कितनी कु नेड़े समझदा है। मरदाने ने आख्या, गरीब नवाज सच्चे पातशाह असी अलपग जीव हां, आप सर

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तुम्हें मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहां ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो, आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता, आख्या हम आदमी हां एक दमी, दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी तेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगलां श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुदबुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने शब्द उचारण

और एक कागज ते लिख दिता जीवना झूठ है। जे कोई कहंदा मैं सदा रही संसार विच रहना है एदे वर्गा झूठ नहीं, ते जे कोई कहंदा भाई ए पता नहीं किस वेले अकाल पुरख दा सदा आ जावे, हम आदमी हां एक दमी ते जाना पवेगा। ए शरीर ता मिथ्या है, ए ता एक दिन मिट्टी दी ढेरी होना ही है। जे कोई कहंदा भाई ए शरीर मिट्टी दी ढेरी होना है एदे वर्गा कोई सच नहीं, तो जीवना झूठ है मरना सच है। इसलिए हजूर कहंदे अन्ना भाई ए मनुष्या जन्म जप जप के सफल कर लो, पता नहीं दरगाह तो कदों सदा

अपना जीवन विचारता सही कितने को दिन तू रह जाएगा। जिना सुखा दे मगर तू भजिया फिरदे हैं, ए अबल ता किसे एक कोल रहंदे नहीं। जे तेरे पास कोई सुख कोई चार कौडियां कोई महल मारियां रह भी गईयां ता तू कितना कु चिर रवेगा। तेनू ता जाना ही पैना है। ते ओथे भाई उना दी पुछ हुंदी है जो जप

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै दीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उसके बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न पाई पही प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है पले पुरुषा पासो कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भक्ति कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिनानू ए चंगे गुण प्राप्त हन भई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

0: साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: प्रेरणी भी चुगी पहुंचे भगवान, जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं। कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश की थी है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीलनी भुख लगी है आखो श्रीवाद पीलनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति, नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन, जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच कि नहीं सकता, गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है, पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, ए तो बड़ी करड़ी मंजिल है औखी घाटी, पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम हुआ। कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा, ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी, चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साध जना की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना, उस माता कोल चली मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

सदगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इहदे बारे।

दर्शन के लिए। हे रविदास, इस आस पे बैठा है कभी ना तेरे दर्शन होंगे। और साथ संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे, वो फिर दुनिया दे राग रंगा वाल, धन दौलत वाल किवें ध्यान दे।

यमुना रविदास का ब्याह कर दी, घरवाली आएगी, स्वभाव बदल जाएगा, जिम्मेवारी पवेगी। भगत रविदास का ब्याह कर दिता, भगत जी की शादी हो गई, पर साध संग भागा ने कर घरवाली ऐसी मिली जे भगत रविदास कहते ने दिन है ते घरवाली अगों हाथ जोड़ के कहती है सत वचन स्वामी जी दिन है। जे भगत जी कहते ने रात है ते घरवाली कहती है सत वचन रात है। भगत रविदास जे अमृत वेले तीन बजे उठते हैं ते घरवाली उन्होंने तो पहला उठ के इशनान कर दी है और भगत जी वास्ते पानी भर के रख दी है इशनान वास्ते। स्वाहिक विचार सात संगत नाम भी तां ही जपिया जा सकता है जे घर विच सलूक हो। हुण एक अमृत वेले उठ पवे ते दूसरा आके ना आप सौंदा है ना सानू सौण देंदा। सवेरे कल्पना पै जाए ते उहने नाम की जपणा आखो सतनाम सिंह। एक गल याद आई, कबीर साहब घर बैठे सन, अपनी घरवाली माता लोही नूं कहण लगे लोहिए अग बाल। घरवाली कहती सत वचन अग बाल दे। फिर कबीर साहब कहते ने उत्ते कड़ाई रख सत वचन। फिर कबीर साहब

फिर गया। हुण कड़ाई दे उत्ते कपड़ा दे दे सत वचन। जद कपड़ा चुकया ते ओ कड़ा प्रसाद बनया सी आगो सतनाम श्री वाहे। हुण साडे वर्गा एक प्रेमी कोल बैठा देखदा पिया सी। वो कहन लगा है काम बड़ा सौखा है, मैं भी घर जाके करना। आखो सतनाम सिंह ते कबीर साहब का गिजिया होया अपने घर जा पहुंची। घरवाली नु कहन लगा अगबार, घरवाली कहती बनाना की है। आखो सतनाम सिंह हुण ये चाहता सी घरवाली सत बचन कहे, हुण जे पहला कहे होवे ते हुण कहे।

सब कुछ है जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनने वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे भगत कबीर साहब वर। कबीर साहब कहते ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मन विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का क्या मन दे। पति कहता है ते घरवाली जी करके अगू बोलती सत वचन कहती या घरवाली कुछ कहती है।

बचा रहे हैं। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अगो नू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिलवाई। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा विआह कर दिता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खुआएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खुआ सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरिया कर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चौकी पा ली, चौपड़ी पा ली। पर अजमान डाढ़ा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा ते कि दुनिया में

गंगा स्नान करेंगे। भगत जी घर वापस आए, दिन बीतते गए। एक दिन एक महात्मा रविदास जी की चुगी विच आए, अपने सुभा अनुसार जो कुछ बल्ले सी सेवा की। जान लगे वो महात्मा कहते ने, रविदास तू बड़ा गरीब है, तेरे को माया नहीं है, मेरे को एक पारस है, ये पारस तू ले ले। ये पारस जिन्हों भी लाएगा वो चीज सोना बन जाएगी, सोना बाजार बेच ते सोने मंदिर मकान बना, आए गए की सेवा कर। सत्संग भगत रविदास जवाब की देते उस साधु, कह लगे महात्मा मेरे को इना समा नहीं कि पहला मैं पारस के नाल सोना बनावा, फिर उस सोने नु बाजार बेचन जा, जिन्ना समा मैं सोना बना के बेचना है उन्ना समा मैं होर नाम ना

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, पगली ओही हालत ते पुछ देने रवदास, मैं तेरे एक पारस दे गया सी। ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं, जिथे रख गए सी उथे पिया होवेगा, आखो सतनाम सिद्ध। वो पारस दरवाजे दे नालों खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम सिद्ध। प्रिख्या लैन आए सन, समझ गए भगत ने माया ते काबू।

कहते ने है इंसान तो कादा हंकार करता है कभी अपने बारे सोचे है तू है कि हड्डियां का पिंजरा दुआले मासल बैठे हैं और दुनिया भर का गंध तेरे अंदर और तू अपने आप को समझता है कि मैं पता नहीं की कुछ हो गया। एक गल याद रखना जो आप गंदगी बाहर देखते हैं कि बाहरों नहीं आई ये इंसान से की थी हुई। भगत जी कहते हैं दुनिया भर का गंध तेरे अंदर ते तू अपने आप को बड़ा

वाणी के सारी कमाल दी, मरी पंक्ति भी कमाल दी। राखो कान उसारो नहीं हो, भगत जी कहते ने डूंगिया नहीं आ पुट, वड्डी कोठी बना, महल बना, किला बना, कोई बच्चा होवे बुढ़ा पावे जवान, सौण वास्ते जगह साढ़े तेल ते चाहिए। कोई बच्चा मरे बुढ़ा पावे जवान मरे, जिथे साड़े आ जाता है वो जगह भी साढ़े तेल नाथ होंगी। भगत जी कहते ने जो मर्जी बना लै, अखीर तेनू जगह साढ़े तेल नाथे मिलनी। आखो सतनाम श्री।

समय न नहीं कि शब्द पूरा पढ़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चलना भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहते ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहन लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्होंने पंडितों को कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जब माया मिली ते जेड़े पहला निंदा करते सन ओही कहन लग पे भगत रविदास वर्गा ते भगत ही कोई नहीं आखो सतनाम सिंह है माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने चितौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और आज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा तो फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल